0: और जैनुल मोहम्मद बहुत अच्छे, आप भी ट्यून्ड इन हैं, और कौन कौन ट्यून्ड इन है, और इनमें हैं ऑफ कोर्स, आपने कहा है एमएल विश्वकर्मा के, आई डोंट बिलीव इन एज, इन एज आई बिलीव इन एनर्जी, डोंट लेट एज डिक्टेट व्हाट यू कैन और कांट डू, बिल्कुल सही। और कहते हैं मत बन खुदा किसी के वास्ते, बस इंसान बन इंसान के वास्ते, वाह क्या बात है, डू नॉट बिकम गॉड फॉर एनीवन सेक, जस्ट बिकम ह्यूमन फॉर ह्यूमैनिटीज सेक, आपने ट्रांसलेट भी कर दिया है एमएल विश्वकर्मा। और सही जवाब आपने दिया है कि आज एक आवाज है, समीर आपने दोनों दिए हैं एमएल विश्वकर्मा ने, लेकिन मुझे एक नाम चाहिए जो कि मैं उनकी आवाज आज सुना रही हूँ।
1: कोयल अपनी जुबान बोलती है इसलिए आजाद है, तोता दूसरों की जुबान बोलता है इसलिए कैद है, हम इंसानों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। शुक्रिया, सुबह का प्यारा सलाम सलमा अहमद की सुम।
0: बहुत अच्छे सलमा अहमद, रोज़ हमें कोई ना कोई सबक सिखा कर जाती हैं। और अमीर अली राना आपने कहा गुड मॉर्निंग, अगर वो मुझे छोड़ने से खुश है तो फिर शिकायत कैसी, मैं उसे खुश ना देखूं तो फिर ये मोहब्बत कैसी। अगर वो मुझे छोड़ने से खुश है तो फिर शिकायत कैसी, कहते वो खुश है ना मुझे छोड़कर तो मैं क्यों शिकायत करूँ, मैं उसे खुश ना देखूं तो फिर ये मोहब्बत कैसी, तो उसको जाने दें। और आपने सही कहा है कि आज किसकी आवाज़ है, अमीर अली राना। दिनेश और शोभना, वी आर एम्बार्किंग ऑन अ म्यूजिकल जर्नी ऑन अ मोस्ट आइकॉनिक रेडियो प्रोग्राम, ब्लिसफुल एस्केप फ्रॉम एवरीडे हलाबलू। कहते हैं कि ये झंझट, रोजाना की झंझट से ना क्या राहत मिलती है, टाइमलेस जॉय, क्या बात है। शोभना एंड दिनेश, आप में से कौन है माहिर इंग्लिश का बता दें मुझे। खैर, उषा फ्रॉम मुंबासा, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल, मुझे लगता है इज द वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी। अच्छा, आपने पहला रफ़ी कहा है ना, तो मुझे एक नाम चाहिए था पर रफ़ी रॉन्ग है, सना काना करेक्ट आंसर, या क्योंकि अगर रफ़ी नहीं तो वो होंगे, सोनल मोदा, बिल्कुल करेक्ट आपने कहा है, सही जवाब दिया है अब। और कल्पना, टुडे आई एम इन स्टोन एज, क्यों, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन आर एरिया। वो कहती हैं कि मैं पत्थर के दौर में चली गई हूँ, क्यों, क्यों कहते बिजली नहीं। कमाल की बात है ये कल्पना का ना, मैंने ना किसी दिन इम्तहान लेना है। खैर, मंजुला विश्वकर्मा,
2: सबको नमस्कार परवीन जी, और आज आप सुमन कल्याणपुरकर के गाने सुनाने वाली हैं। आज मेरा एक सवाल है मंजुला गोरसिया की स्टाइल का फिल्मी सवाल है कि एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया, वो जो हैं वो हैं फरहान अख्तर की मौसी हैं और जावेद अख्तर की साली हैं, वो कौन है।
0: क्या कमाल का सवाल है, बाल कलाकार के बतौर आए कई फिल्मों में, फरहान अख्तर की मौसी हैं वो, तो कौन है आपने बताया।

0: अंजुला विश्वकर्मा के सवाल का जवाब देना है, लेकिन उससे पहले कुछ मैंने भी कहना था वो भी करेंगे, पर सवाल को ध्यान में रखिएगा। दिनेश पोपट, नमस्कार परवीन जी, आई एम रेडी टू एंजॉय 3 hours ऑफ योर बेमिसाल्स, एंड द सिंगर यू हैव चोजन इज मोहम्मद रफ़ी। नहीं दिनेश, करेक्शन, इट इज सुमन कल्याणपुर। जी बिल्कुल, दिनेश पोपट आपने सही कहा, जैसे और भी लिसनर्स ने कहा है कि सुमन कल्याणपुर है।
1: प्रवीण जी, तुम ही मेरे मीत हो, ये गाना प्यासा पंछी का है, 1961 की मूवी है, जिसको हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर ने गाया है, और जिसको कमल जलालाबादी ने लिखा है, और जिसकी धुन कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है। ये ब्यूटीफुल हेमंत कुमार का गाना सुनाने के लिए आपका शुक्रिया।
0: और अब देखते हैं कि और आज आंसर जो है एक आवाज का, शब्बीर कहते हैं ऑफ कोर्स इट्स लता जी, एंड लता के साथ हेमंत, नहीं वो हेमंत के साथ कोई और ही थी, मैंने अभी बताया ना। अब अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर कहती है सुमन कल्याणपुर। जी आज सुमन कल्याणपुर की आवाज आप सुनेंगे, बेशक और सिंगर्स के साथ आए लेकिन होगी इन्हीं की आवाज। अच्छा, नीता मोदी ने क्या लिखा है, नीता मोदी कहती हैं कि सुमन, बिल्कुल सुमन कल्याणपुर करेक्ट आंसर है, एंड माई हार्टिएस्ट कंडोलेंसी टू रंजन विनोद। यस, हम जरूर दुआ करेंगे, और मे गॉड गिव हर स्ट्रेंथ टू बेयर द लॉस, बैड लक, नो पावर इज जस्ट गॉन। उफ अल्लाह, मैं क्या करूं इस बिजली का, हमारे लिसनर्स कितने परेशान हैं बिजली से, पर समय हमें तो आदत नहीं होगी। मैं तो, मुझे तो लगता है जैसे कल्पना करती, मुझे आदत हो गई है, मुझे लगता है मैं किसी गार में बैठी हुई हूँ, पत्थर का जोर है और वो कुछ लिख भी रही होंगी इस पत्थर के। तो चंद्रिका वासंत गोसाई, आपको बिजली ने नहीं किया परेशान। रोजीना मावजी कहती हैं कि सुमन कल्याणपुर, बिल्कुल आपने कहा है। गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, रोजीना मावजी की शुभकामनाएं। हरीश वरसानी, थोड़ी देर के बाद हरीश वरसानी ने क्या कहा है वो सुनाती हूँ।

0: और कहते हैं हरीश वरसानी के, देखो तुमने मजबूर कर दिया जुदा होने पर, तुमने मजबूर कर दिया जुदा होने पर, वरना हमें तुम्हारी झूठी मोहब्बत से भी मोहब्बत थी। क्या बात है, हमें तो तुम्हारी झूठी मोहब्बत से भी मोहब्बत थी लेकिन तुम रही नहीं। तोबा तोबा, अच्छा ही किया वो चली गई, ये झूठी मोहब्बत से क्या मोहब्बत करनी है। रमेश हरिया कहते हैं कि आज आपकी लिस्ट में सुमन कल्याणपुर का फेमस गाना जरूर होगा, तुमने पुकारा और हम चले आए। देखिए इनका रिक्वेस्ट करने का अंदाज देखिएगा, जब वो कहते हैं ना मैं फरमाइश कर रहा हूँ तो मैं सुनाती नहीं हूँ, आज उन्होंने सोचा मैं ऐसे कहूँ आपकी लिस्ट में ये गाना होगा जरूर, है ना। ओके रमेश हरिया, अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कॉल मैसेज कर दे, मैं ज़रूर सुनाऊँगी। और दी आंट इज़ सो एंड सो, ये कहा है सलमा अहमद, पहला आंसर आया है मंजुला विश्वकर्मा के सवाल का कि ये वो हैं। ओके वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताती हूँ।
1: सलाम और आदाब शहजादी साहब और सबको, इसीलिए तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सुमन कल्याणपुर की आवाज़ इतनी मिलती जुलती थी लता के साथ, यू नो आई वॉज लॉस्ट ऑनेस्टली। तो आप रियलाइज किया कि हाँ भाई वो गाने से, हेमल और उनके गाने से क्या बात है, शी वॉज दैट क्लोज। बाय।
0: बिल्कुल शब्बीर अहमद, उनकी आवाज को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल था लता की आवाज़ से, इसीलिए तो इतना बड़ा हथौड़ा मारा। ओके शैलेश और शीला आप भी इंजॉय कर रहे हैं। भरत, डेजी ईरानी जवाब होगा मिसेस विश्वकर्मा का, और डेजी ईरानी ही सलमा ने भी कहा है, इसका मतलब डेजी ईरानी ही है, और चिराग ने भी कंफर्म कर दिया डेजी ईरानी है और आपकी आवाज़ सुमन कल्याणपुर है। जी हाँ, दिनेश पोपट, और समन यहाँ पर आया है लंदन, एक्चुअली मैनचेस्टर से भास्कर पटेल ने कहा ओके कल की ग्रीटिंग तो थी, आज भी ग्रीट कर दीजिएगा, और समन मैंने आपको, मैं कह दूं कि वो आपको याद कर रहे हैं, भास्कर पटेल। सैली डार कहती हैं डजंट मैटर इफ द ग्लास इज फुल और हाफ हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ ग्लास एंड देर इज समथिंग इन इट। ये ना सोचें कि ये आधा भरा हुआ है कि आधा खाली है, ये सोचें ग्लास तो है। कमाल है सैली डार फ्रॉम लंदन। और दिनेश पोपट, अ डोर इज लार्जर देन अ लॉक एंड अ लॉक इज लार्जर देन अ की, येट द की द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल हैज द पावर टू अनलॉक द एंटायर हाउस, दस अ स्मॉल एंड थॉटफुल सोल्यूशन कैन सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम। बिल्कुल दिनेश पोपट, सिड कप लंदन। और अब चलते हैं कल्पना, एक्चुअली आई डोंट माइंड अ पावर आउटेज वंस इन अ वाइल, बट व्हेन वी प्लान, व्हेन वी हैव प्लान टू डू सम वर्क व्हिच नीड्स इलेक्ट्रिसिटी देन इट इज अ प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं, आई डोंट हैव अ पावर बैकअप बट द जनरेटर्स अराउंड गिव अ लॉट ऑफ हेडेक, शांति भंग हो जाती है। बिल्कुल सही, ये एक राइटर का जवाब है ना, इसलिए। अच्छा अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर, थोड़ी देर के बाद हमने ब्रेक लेनी है, आपकी भी आवाज सुनाई जाएगी।
2: दिस इज ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स। ईस्ट एफएम, केन्यास प्रीमियर एशियन मिक्स।
3: Let us pray that divine blessings of Goddess Durga bring you eternal happiness. Happy Navratri to you and your family. Tune in to East FM to hear the Mataji Aarti at 7 a.m., 10 a.m. and 6 p.m. Proudly brought to you by DPL Festive.
2: Kenya, the R&B royalty, the ladies man, Neo, is coming live to Nairobi this 20th October, Mashujaa Day.
4: What's going on? This is Neo. October 20th, I will be in Nairobi and I cannot wait to see you.
2: Experience Neo at the One Night Only Brunch Edition at Ulinzi Sports Complex, Langata.
4: I'll be performing all my global hits. You better be ready to sing and dance along with me.
2: And listen carefully. We have a special couples bundle ticket for two for only 20,000 Kenyan shillings. But they are limited too. So visit TicketYetu.com now. There are also gold tickets for 15,000 shillings and 40,000 shillings platinum. It's Neo. One night only. R&B brunch experience.
4: Kenya, I'm coming. So grab your tickets now so we can have a party.
2: 20th October at Ulinzi Sports Complex, Langata. Brought to you by Fenin and Radio Africa Group. Powered by Stanbic Bank.
5: Let's get it now.
2: Pay with your Stanbic World Elite credit card and enjoy exclusive cashback rewards, including 5% cashback on gold couple tickets and 10% cashback on platinum tickets.
3: The spicy spot on the

0: और फिर उन लोगों ने सुमन कल्याणपुर को लेने का वो शुरू कर दिया गानों के लिए, और फिर वो इतनी पसंद आई सबको कि लता जी की कमी ऑलमोस्ट उसको खल नहीं रही थी कि लता जी के बिना ये मतलब बॉलीवुड में कोई और सिंगर, फीमेल सिंगर नहीं मिलेगी। और फिर कुछ अरसों के बाद किसी बड़े म्यूजिककार ने वो सुलह करवा दी रफ़ी जी और लता जी के साथ, तो फिर उसके बाद फिर से उसको हम कह सकते हैं कि जैसे सुमन कल्याणपुर को डंप भी कर दिया बिल्कुल बेचारे को, नहीं तो ये बहुत बेहतरीन में से बेहतरीन आवाज थी, फाइनेस्ट आवाज थी।
1: बिल्कुल सही, बहुत ही ब्यूटीफुल सुमन कल्याणपुर। जी हाँ, वो इसलिए झगड़ा हुआ था कि लता मंगेशकर ने कहा कि रॉयल्टी में हमें इजाफा चाहिए, बड़ी बड़ी होनी चाहिए रॉयल्टी। तो मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा कि जितनी कीमत मिलती है एक गाने की उसमें रॉयल्टी भी शामिल है, मुझे रॉयल्टी के लिए झगड़ा नहीं करना। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं माना था और कहा कि मैं तुम्हारे साथ गाऊंगी नहीं। और तभी तो फिर आशा भोसले भी आ गई। और यहाँ पर समन, जो आंसर है मेरा, इससे पहले कि मैं आपको रेखा वालिया का सवाल पूछूं, आंसर है फायरिंग स्क्वाड। समन, वो जो आदमी है उसने, जी हाँ, उसने हमला किया था कई लोगों को, और अमेरिकी फौजी थे उन पर, फोर्ट हुड में हमला किया था और कई मारे गए थे 13। तो उसको कहते हैं कि फायरिंग स्क्वाड के सामने रख कर उसको गोली मार दी जाए और फिर ये लाइव स्ट्रीम किया जाए, सारी दुनिया को टेलीविज़न पर दिखाया जाए, ये सदर ट्रंप ने कहा है। और एक गाने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि रेखा वालिया क्या पूछना चाहती हैं।
2: हमारी शादी को कितने दिन हो गए?
3: 2 हफ्ते।
2: अब भी बताना होगा क्या जी चाहता है?

0: अच्छा अश्विन दोषी, इससे पहले कि आप बात करें, हितेन ने एक मैसेज आपके लिए भेजा है. परवीन जी, एटलीस्ट वी नो दैट अश्विन दोषी हैज गॉट दिस अमेजिंग नॉलेज अबाउट फिल्म्स एंड सॉन्ग्स एंड ही डज नॉट कंसल्ट गूगल. हैट्स ऑफ टू हिम. ये लंदन से आया है हितेन का जवाब. जी
1: यस, मुझे भी आया है, मुझे भी आया है.
0: अच्छा ओके.
1: देखो सबसे पहले परवीन जी मेरी अपोलॉजी.
0: अच्छा,
1: वो जो गाना था मैं जो जब जब फूल खिलेगा, मुझे ऐसा लगा था कि ये लता मंगेशकर है.
0: मुझे
1: भी. इनफैक्ट इट वाज सुमन कल्याणपुर एंड मैंने चेक किया.
0: ये तो छोटी सी बात है. बिल नहीं नहीं नहीं, ये तो वही हुआ ना जैसे आटे में एक चावल का दाना हो. आपकी इतनी नॉलेज है, इसमें एक चावल का दाना आ गया.
1: नहीं फिर भी नहीं, I must if I'm wrong I have to accept and say that yes I was wrong and I will be careful.
0: Thank you, thank you.
1: Yes. और ये गाना भी सुमन कल्याणपुर और मुकेश का था. ये
0: बिल्कुल साथी वैजयंती माला थी,
1: वैजयंती माला और राजेंद्र कुमार
0: जी.
1: और म्यूजिक नौशाद अली का था परवीन जी. और गीत सभी लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने, नहीं शकील बदायूं ने. नहीं
0: अच्छा, मजरू
1: ये सही मजरू ने. और दिस टाइम ही डिडंट टेक मोहम्मद रफी बट मुकेश एज द
0: म्यूजिक है ना,
1: राजेंद्र कुमार वैजयंती
0: बिल्कुल.
1: या और सिमी गरेवाल भी थी.
0: ओके क्या बात है. ओके अश्विन, अब देखते हैं एक और गाना है, ये भी मुकेश के साथ सुमन है.

0: East FM, Kenya's premier Asian mix.
1: और यहाँ पर आता है सवाल. किसका सवाल है? रेखा वालिया.
2: रवीन जी, आपको और बेमिसाल साल के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार. थर्सडे रीडल का दिन, तो मैं लिसनर से एक रीडल पूछ रही हूँ. ऊपर नीचे मेरे काटे, ऊपर नीचे मेरे काटे, खाने में मैं मीठी हूँ, गुच्छों में भी बिकती हूँ, छील कर जो देखो मुझको, सफ़ेद के भीतर कथई हूँ. फिर रिपीट करी हूँ. ऊपर नीचे मेरे काटे, खाने में मैं मीठी हूँ, गुच्छों में भी बिकती हूँ, छील कर जो देखो मुझको, सफ़ेद के भीतर कथई हूँ, मैं क्या हूँ? थैंक यू रेखा वालिया.
1: और वो तो बता दिया है रेखा ने मुझे, लेकिन आपने गैस करना है कि ये क्या चीज है. ऊपर नीचे मेरे कांटे, समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है. गुच्छों में भी मैं बिकती हूं, जैसे कि अंगूर का गुच्छा हो, हा? इस तरह से ये भी है. खाने में मैं मीठी हूं, सफेद के भीतर कुछ हूं, कथई हूं. ये क्या है? और मैं आपको आंसर दे दूं, आंसर नहीं देना चाहती. क्लू एक और है कि ये ऑफकोर्स खाने की चीज़ है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना, खाने में मैं मीठी हूँ. सो इन तमाम क्लूज को लेकर ये कौन सा है फल, कौन सा फल है? 07011061106.

0: और हितेन आपने कहा है व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस सुमन कल्याणपुर हैड इट्स सच अ शेम शी डिडंट गेट द एक्सपोजर एंड एक्लेम दैट शी डिजर्व्ड सेम हैपेंड विद हेमलता जी हेमलता की भी बहुत ही खूबसूरत आवाज थी पर समय कैसे दबाने में कामयाब हुए खैर पहला आंसर जो अभी अभी रेखा वालिया ने सवाल किया है बीना पटेल वेल डन करेक्ट आंसर रमेश हरिया ने फन्नास का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि अश्विन जी की कोई गलती नहीं है हमेशा समन कल्याणपुर और लता की आवाज को लेकर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल सही रमेश हरिया और सलमा अहमद करेक्ट आंसर है आपका साथ ही आई हैं शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका करेक्ट मंजुला विश्वकर्मा बिल्कुल सही जवाब सबके सही हैं सना पाइनएप्पल नो अमीर अली राणा बिल्कुल करेक्ट और ये आपने यहाँ का जो है ना नाम दिया है और ये भी करेक्ट है नीता मोदी बिल्कुल सही यासर पाइनएप्पल नो क्योंकि पाइनएप्पल गुच्छों में बिकने लगे तो फिर कोई डायनासोर ही बेचेगा ना एक पाइनएप्पल उठाया नहीं जाता अगर पाइनएप्पल गुच्छे में बेचने पर एनीवे आप चेंज कर सकते हैं मिसेस धंजल बिल्कुल करेक्ट मिसेस धंजल और मनहर पटेल
1: हेलो नमस्कार मनहर बोलता हूँ किसुमु से मेरे ख्याल से ये लीची फूड है लीची फ्रूट्स लीची जिसको साइड में सारे बाजू कांटे जैसे होता है और अंदर से वाइट भी है और थोड़ा सा उसमें से स्वीट पार्ट निकलता है वो अपने खाते हैं मनहर पटेल किसुमु
0: जी हाँ हम खाते हैं मनहर पटेल आपका आंसर करेक्ट है सभी को नमस्कार बिंदु आपने जयपुर से कहा है कि ये आंसर है करेक्ट और रितु गुप्ता बिल्कुल करेक्ट है आंसर और कोई देना चाहता है तो ज़रूर

0: जी अश्विन, ये कौन सी फिल्म है भला?
1: जी
0: ये कौन सी फिल्म है?
1: बरसात की रात।
0: अच्छा, घर जत बरसत। ओ ओके।
1: ये मेरे ख्याल से श्यामा और somebody else पर स्क्रीन पे गा रहे हैं।
0: ओके।
1: और प्लेबैक सिंगिंग सुमन कल्याणपुर और कमल बारोट है।
0: अच्छा, ये कमल बारोट के साथ गा रही हैं।
1: यस। और म्यूजिक था रोशन का।
0: हाँ।
1: और गीत सभी लिखे थे साहिल उद्यानवी ने।
0: अच्छा।
1: प्रिंसिपल स्टार थी मधुबाला।
0: वाह क्या बात है, मधुबाला की।
1: और साथ में थे भारत भूषण। और फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई।
0: इन दोनों की भी इतनी कामयाब जोड़ी थी, भारत भूषण और मधुबाला।
1: यस। और इनके गाने परिंद जी जिंदगी पर प्रसाद की रात और सभी गाने पर मोहम्मद रफी ने तो कमाल कर दिया था।
0: कर दिया।
1: और वो और जो कवाली ना तो कारवां
0: की तलाश है जी
1: ना हम ये वो भी और क्या, दिस वॉज ए रियली म्यूजिकल ट्रीट पर
0: तो फलाबो खत्म हो
1: गई। रोशन ने कमाल कर दिया। और मैं तो मधुबाला
0: राइट ऑफ कोर्स हम भी। और मैं आपको बताऊं, औरतें भी उनको देखना चाहती थी, ऐसा हुस्न था मधुबाला।
1: आई टेल यू नोबडी लाइक हर।
0: नो नो नो मोर। सही है अश्विन। बिल्कुल। थैंक यू। अच्छा समीन, यासर ने कहा है कि द आंसर इज दिस, और जैंजिबार में, और इसका नाम है शोके शोके शोके शोके। ओके, आपको पता चल गया मैं किसकी बात कर रही हूँ। लाइचीज। चंद्रिका वासंत गोसाई, आपने करेक्ट दिया था, रीतू ने भी करेक्ट दिया था, और बिंदु ने भी, सभी ने लाइचीज की बात कर रही थी, रेखा वालिया। हम एक और सुन लें। अच्छा, एक और तो सुनेंगे, लेकिन समीर मैंने आपको ये बताना था कि देखो कैसे लोग बच गए हैं। एक कातिल जो कि उसका दिमाग नहीं ठीक, समीर लग रहा है कि जैसे दिमाग ठीक नहीं है, 19 साल का अमेरिका में गिरफ्तार हो गया, शिकागो के एक टेंपल में, हिंदूज जहां जाते हैं तो सब टेंपल में थे उस वक्त। तो ये 19 साल का लड़का आदमी, ये राइफल लेकर, राइफल इंतहा, ये एक्सट्रीमिस्ट है, इसके दिमाग में बस नफरत भरी हुई है। और नफरत किन के लिए? जो इसके जैसे नहीं हैं, इसका रंग नहीं रखते, या इसके धर्म जैसे, इसका जो धर्म है उस पर नहीं चलते। तो ये पूरी प्लानिंग करता है कि मैं इस मंदिर को अटैक करूँगा, मनसूबा बना कर आता है। और समझ, जब पुलिस ने पकड़ा, इसके पास लिटरेचर भी थी एक्सट्रीमिज्म की, कि कैसे नफरत करने हैं दूसरे धर्म के लोगों के साथ, जिसमें इसकी सोच का सबूत है वो लिटरेचर भी। खैर, राइफल उठाई और सारे भक्त, हिंदू भक्त बैठे हुए हैं, मंदिर है, ट्रिगर दबाया, मगर गोली नहीं चली। क्यों? कहते हैं कि राइफल जैम हो गई, लेकिन समझ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था इसके साथ काम करने वाले ने कि ये मंसूबा बना रहा है, इस दिन वहां जाएगा, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो हो सकता है कि पुलिस ने किसी तरह से इसकी राइफल जैम पर वो हो गई। खुदा ने की क्या, कितने लोगों की जान बच गई समझ। और क्या लिखा था मैंने, कहा था ना कि एक्सट्रीमिस्ट लिटरेचर भी है उसमें, अपने बारे में लिखा, आई एम अ सोशियोपैथ, आई एम वाइट, आई एम सुपर वाइट सुप्रेमसिस्ट, मतलब कि मैं मानता हूं कि गोरे सबसे ऊंची जात है, बाकी सारी दुनिया गोरों के नीचे, वाइट सुप्रेमसिस्ट। कहते मैं नियो नाट्सी हूं, फिल्ड विद हेट्रेड, मुझ में नफरत भरी हुई है। ये सब लिखा तो फरसामिन, ये आप कह सकते हैं कि ये भी लिखा हुआ है कि मैं हमेशा मास मर्डर का ख्वाब देखता हूं। समझ, ऐसी बातें एक जो ठीक ना हो मेंटली वही कर सकता है। इसको हो सकता है कि इसको हेल्प चाहिए, साइकाइट्रिस्ट की मदद चाहिए होगी, इसको सजा नहीं देंगे।
2: It's 12:19.
3: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
4: Bloom Africa is recruiting a grant and learning associate on behalf of our client, a Kenyan-based feminist and community-focused non-profit organization working across gender justice, climate justice, holistic health, culture and community action. A relevant bachelor's degree and approximately 5 to 7 years of relevant experience in philanthropy, grant-making, community development, social justice, program management or a related non-profit environment is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
3: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com. Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
5: Let's talk money on East FM with Absa. As Onesmas Masvi, head of premier banking at Absa Bank, talks about financial freedom.
6: Many people assume financial freedom means having more money. When it comes to Absa Premier Banking, we do understand that our customers have been able to achieve some sort of financial freedom, but they are yet to meet their goals, their dreams, and that is where we come in as Absa Premier Banking. We partner with you and we're able to help you achieve these dreams and these goals at a personal level, and you're able to meet those particular goals.
5: At Absa, we help you build, grow, and protect wealth through every stage of your journey. Download the Absa Bank Kenya app to open your Absa Premier account today. Absa, your story matters. TNCs apply. Absa Bank Kenya is regulated by the Central Bank of Kenya. Yeah.

0: और यहाँ पर आई हैं मंजुला विश्वकर्मा।
1: अरविंद जी, जो आपने इसके पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि वो कौन सी सजा है जो दी जानी है, तो उसका आंसर क्या था? मैंने जो दिया था वो करेक्ट था क्या?
0: जी मंजुला विश्वकर्मा, आपने भी शायद लाइची कहा था, है ना? ये उसकी बात आप कर रही हैं। ओके, शब्बीर अहमद।
2: सजाई साहिब है शब्बीर। सलाम आदाब, क्या बात है? तो ये जो बरसात की रात का आदमी है, क्लासिकल सुना दिया ना, सुनील कन्यानपुन और कमल बारोद का, क्या बात है, व्हाट अ अमेजिंग क्लासिकल वो ड्यूट था, क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट, बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम का। ब्लेस बी यू माय डियर।
0: थैंक यू सो मच। वो ज़रा क्वालिटी में थोड़ा मुझे फ़र्क नज़र आ रहा था, किसी दिन पूरी तरह से आपको ये सुनाऊंगी। और समझने एक कुछ मिला है, एक साहिल पर, किस मुल्क के साहिल पर कुछ ऐसा मिला है जो पता नहीं कितने साल पुराना है। क्या मिला है वो मैं आपको बताती हूँ।

0: क्या बात है, क्या कमाल है। और मेरे ख्याल से क्योंकि उस वक्त अच्छी तरह से आवाज नहीं आ रही थी।
1: अरविंद जी, मैं लाइची की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो सभी ने सही दिया है। उसके पहले जो आपने पूछा था ना कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति की पत्नी जो कि इंडियन है, उनको उनसे पूछा गया कि वो सजा देखना चाहेंगी क्या, तो वो सजा आपने पूछी थी ना
0: जी, वो सजा थी फायरिंग स्क्वाड। और मैंने जवाब भी दिया, मैंने कहा मुलजिम को लेकर आएंगे और उसके सामने चार पांच आदमी खड़े होंगे वो बंदूकें लेकर, फिर वो मुलजिम इंतजार करेगा कि पहली गोली उसके सीने में उतरे, दूसरी गोली, तीसरी गोली, चौथी, वो सभी शिकार करेंगे एक मुलजिम का। तो ये घिनौना खेल कहते हैं कि लाइव स्ट्रीम करना चाहिए, ये किसी की मर्जी है, होगा नहीं। सब एक महजब माशरे में, महजब तो आजकल हम अपने आप को कह भी नहीं सकते, सिविलाइज्ड माशरे में ये नहीं होता। जैसे कि अरब देशों में वो लोगों को इकट्ठा करके मारते हैं, फांसी देते हैं, और लोग न जाने बेहिस हो गए हैं या क्या, लेकिन वो देखने आते हैं ऐसा मंजर।

0: और ये हो गई ट्रेडिशनली इन अ फायरिंग स्क्वाड. किसने कहा है? अमीर अली राना कहते हैं ट्रेडिशनली देयर इज ओनली वन रियल बुलेट, द रेस्ट आर ब्लैंक्स. दैट इज व्हाट आई हियर. पर मैं श्योर हूं कि ब्लैंक्स का तो कोई फायदा नहीं. द सोल्जर डज नॉट नो हु हैज अ रियल बुलेट. दिस इज टू अवॉइड गिल्टी कॉन्शंस फॉर द सोल्जर. ओके अमीर अली राना, थैंक यू. बहुत हसी हैं तुम्हारी आंखें. शमीम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मजा आ गया इस गाने का. अगला भी आप एंजॉय करेंगे. चलिए
1: ईस्ट एफएम प्रीमियर एशियन मिक्स. वी अनलॉक्ड गवा फॉर यू. नाउ वी आर गिविंग यू अ फ्रंट रो सीट इनसाइड गवर्नमेंट, इनसाइड द कैबिनेट, इनसाइड द डिसीजन मेकिंग कमिटीज, इनसाइड व्हाट्स अबाउट टू हैपन एंड व्हेन इट'ल हैपन, इनसाइड द बिग अपॉर्चुनिटीज, इनसाइड द टेंडर्स, इनसाइड गवर्नमेंट जॉब्स. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
2: Every brand has a story. The big idea, the exciting new product, the offer your customers will love, the service you've worked hard to build. And when you've got something this good, why not give it a bigger stage? Give your brand the kind of exposure that gets remembered with East FM. Whether you're launching, promoting, growing, or celebrating a new milestone, we'll help you turn your message into something people remember. Advertise with Radio Africa Group. Whether you'd like to advertise on the Star, our digital platforms including Mpasho, and even on air with East FM, call us on 0711 046 200 or email sales@radioafricagroup.co.ke. Your brand has a story. Let's give it the audience it deserves on East FM.